0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qian de ngo ni xi li no le chan chan jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai ri
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ri zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zu
1: और ये गेम जो जितला जुब सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यो से जेजो लंका का मांस दे देना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो मछु जो जटा मुन्यो रो संग तंगा मोटा तो तो मट ताते ले गेम गने जेजो लंका दी पेंडो रे
0: रे रे तंगा ह गिंग के का शाम बत की छि इन रो तिन मो ने ला सान रो रे और रे रे लंका
1: क्यों तो हमें छाया बस के चला जे पिन जो रो होयो
0: गोया पोता
1: होयो ला 把足清不没有危机，场面解决难困难，马上有呢，也不有。
2: 主播那不做，所有了青豆呢，顶对起给他气味，人都出不起来。所有了青豆集团为那些全用顶对半截云集泡沫毛病，那位水当迎接巨的教育。那不的，所有了青豆集团为了用这几材料对马来西亚。 月干西楼等年端西谷所公盟这边，几乎跟着阿九姐、米都得几月。买这等增值特别，那些地带呢，突然碰见钱追等退了，顶对开胃中间跟着云山家当年要些拉瓦些的节约，想了新竹人家呢，所以了钱都不接单位，年节顶别那些些，透露了昂心路。